0: तुम कुफा भी
1: अंदेवनी मालागासराई नु मालागासरेनी संजीसिंगे रेफंबाम तेनी ब्रेरेरी केफकसकस चिम तेन सुन तेन मालागास दिरंदुसी दिरने गान फिज में ना कावे उन तुकातान सिमिस रेम तेन मालागास इन सुन बुजाना की न्याफ अचाने नात फुन रसेंद जे पा मांगन तेन मालागास इज में ना काव रो मांगास चाइन नी ममाल रो मालागास यावन बुफात ची न्याफ लेला सिन वावन रामतेन जास जेम्री सकम रश्दी नीच उल नाम्बान तेन नी वोईन वतोन लाजन फमा मेन ताल जात तेन लाजन जेन जवन मिशियेन चिकेतोर इन नम तुईन आवन सियावन उया ममाल रेफा चुआस दे हुन हुन सीशन तेन मालागास Nyandroa vengamba auka uteleni. Si ula zena tsuta tia fenpeni. Njash de andu nyaze tsilevuni. Nivai ni andi. Mtumbu ni andevuni.
0: Shota tumbu kula, shota tumbu kufafu.